0: বন্দনা অনুষ্ঠানটি শুনিলে। আজিৰ বন্দনা অনুষ্ঠানত ক্ৰমে কান্তা দেৱীৰ কণ্ঠৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ বিৰচিত বৰগীত, সৰলা দেৱী আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ নাম, নৃপেন চন্দ্ৰ দাস আৰু সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ টোকাৰী গীত, আদিত্যনাথৰ কণ্ঠৰ চিয়াগীত আৰু ৰুবি চৌধুৰীৰ কণ্ঠৰ ভজন শুনিলে। বন্দনা অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজী বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ যোগে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test on NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for investigation in the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency on 3rd of this month. In this case, Special Operations Group of the Rajasthan Police has so far detained 15 people. The Special Operations Group yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Nashik police have also detained a man in connection with the NEET paper leak case. CBI has now taken his custody. In Tamil Nadu, the TVK government is scheduled to prove its majority in the assembly today. Chief Minister C. Joseph Vijay has been holding meetings with leaders of supporting parties to consolidate support ahead of the floor test. Along with the backing from allies, the TVK government has secured the support from the breakaway faction of AIADMK and the lone MLA of AMMK, S. Kamaraj. The TVK now has support of around 150 MLAs in the assembly. Meanwhile, in a dramatic turn of events in the political situation in Tamil Nadu yesterday, the AIADMK split into two groups over extending support to the government. The faction, led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. In West Bengal, following the change of government, the state police has adopted a stringent stance regarding law and order and past cases of political violence. In this regard, ADG Law and Order issued a detailed directive yesterday to all police commissioners, police superintendents and railway police authorities mandating a series of immediate actions. The directive orders a fresh review of all cases related to violence following the 2021 assembly elections, including those where final reports have already been submitted. In Maharashtra, 6 devotees were killed and around 15 were injured after a wall collapsed during a religious gathering in Jat Tehsil of district yesterday. More than 300 devotees had gathered at the site when strong winds accompanied by heavy rain lashed the area. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives. He has wished for the speedy recovery of the injured. The fragile ceasefire between the United States and Iran appears increasingly unstable after President Donald Trump rejected Tehran's latest peace proposal, describing the agreement as being on massive life support and dismissing Iran's counteroffer as garbage. The sharp exchange has deepened uncertainty over efforts to prevent a wider conflict in West Asia. On the other hand, Iran's parliament speaker, Mohammad Bagheer Ghalibaf, warned that the country's armed forces were prepared to deliver a lesson-giving response to any aggression, while Tehran defended its proposal as reasonable and generous. US President Donald Trump is scheduled to arrive in Beijing today for a high-stake 3-day visit to China. The much-anticipated meeting between Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is expected to feature discussions on several aspects of bilateral ties, with Mr. Trump indicating that trade would be a key topic on the agenda. The visit will mark Trump's 7th face-to-face meeting with Xi and the first trip by a US president to China since 2017. The India Meteorological Department has issued red alert for heat wave conditions in Rajasthan. Border districts of state are currently reeling under severe heat wave conditions. Temperatures at several places are being recorded between 45 and 47 degrees Celsius. Barmer was the hottest place in the state yesterday, with a maximum temperature recorded at 48.3 degrees Celsius. In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Sunrisers Hyderabad by 82 runs to take the top position in the points table with a compelling all-round show in Ahmedabad last night. Chasing the target of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were bundled out for just 86 runs in 14.5 overs. In today's fixture, Royal Challengers Bengaluru will take on Kolkata Knight Riders in Raipur. The match will begin at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰত 1035 কিলোহাৰ্জত আৰু ডিএফএম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্জত। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ নিউজ অন এআইআৰ এপ, এআইআৰ ৰেডিঅ' এপ যোগেও শুনিবলৈ পাব। এতিয়া শুনক অনুষ্ঠান পৰিস্থিতি।

0: ৰ হৈ কাগিছ ৰাবাদা আৰু জেছন হোল্ডাৰে তিনিটাকৈ উইকেট দখল কৰাৰ লগতে প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণাই দুটা আৰু মহম্মদ ছিৰাজ আৰু ৰশিদ খানে এটাকৈ উইকেট লাভ কৰে। কাগিছ ৰাবাদাক প্লেয়াৰ অব দ্য মেচ ঘোষণা কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে গুজৰাট টাইটানছে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত কুৰি অভাৰত পাঁচটা উইকেটৰ বিনিময়ত 168 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ছাই সুদৰ্শনে সৰ্বাধিক 81 আৰু ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে 20 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मॉनसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवी के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
2: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोग ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव पी शुनगुमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VP रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी

0: कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद GDP के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक जीत के बाद अपने सातवें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसेवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसेवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसेवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি, 12:05 ইংৰাজী বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্য বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल का वितरी कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के

अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिसको ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह SOG द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत SOG ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। IPL क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं त्रिनेनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में।

हम अब से कुछ ही देर में शुरू करेंगे मधुर गीतों का मनभावन सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही क्षणों में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम फिल्में नगमे, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम तरंग। 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। दिन के 2 बजे मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद दिन के 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का अंत होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

0: प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है लोफर फिल्म से उदित नारायण और साथियों के आवाजों में।
1: डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर डुमर चिकर डाका चिकर।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 290.9 मीटर 1.35 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1.26 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत हीरो फिल्म से। गीत के बोल है कुमार के, संगीत है अमाल मलिक के और आवाज है पलक मुच्छल और अमाल मलिक के।

हमारा अगला कार्यक्रम है फिल्मी नगमे, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्मी नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है प्रियतमा फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम तरंग। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे शाहरुख खान द्वारा अभिनीत फिल्मों से गीत। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1960 में नई दिल्ली में हुआ। खान का बचपन दिल्ली में गुजरा। उनके पिता मिरताज मोहम्मद एक स्वतंत्रता सेनानी रहे और मां सामाजिक कार्यकर्ता रहीं।

अभी आपने सुना ये गीत दिल तो पागल है फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शाहरुख खान, जिन्हें लोग किंग खान या बादशाह कहते हैं, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

अभी आपने सुना यह गीत वीर ज़ारा फिल्म से लता मंगेशकर के आवाज में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना है कभी खुशी कभी गम फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम के आवाजों में।

खान को कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग का शौक था और वह दिल्ली के तमाम थिएटर ग्रुप से जुड़ गए और 1980 में टीवी सीरियल फौजी से अपनी करियर की शुरुआत की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत परदेस फिल्म से कुमार सानू के आवाज में।

खान ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 14 फिल्मफेयर अवार्ड सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीते। शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक ब्रांड और एक प्रेरणा है। एक मिडिल क्लास लड़की से ग्लोबल सुपरस्टार बनने तक का सफर ये साबित करता है कि अगर जुनून और मेहनत हो तो कुछ नामुमकिन नहीं।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और जेरम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे मधुर बंगाली गीत। कार्यक्रम का पहला गीत है शोभाई तो सुखी होते चयन एल्बम से पुलक बंदोपाध्याय के आवाज में।

इसी के साथ होता है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत की समाप्ति। अब दिन के 2 बजने को है और आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष

0: से मैं कनकलता।
1: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
0: श्री फ्रांसिस को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान

0: ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसे हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यह लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का

0: स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रसारण का अंतिम एवं युगल गीतों का कार्यक्रम प्रीत लड़ी की तरफ। कार्यक्रम का पहला गाना है जय हो फिल्म से शान और श्रेय घोषाल की आवाज में।

अब हम सुनने जा रहे हैं अगला गीत, कोई किसी से कम नहीं फिल्म से उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में।

इसी के साथ होता है आज के प्रसारण के अंतिम कार्यक्रम प्रीत लड़ी की समाप्ति। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं त्रिनेनी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: स्वागत है आप सभी का विशेष फोन इन रेडियो डॉक्टर में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हीं में है स्किन से जुड़ी समस्याएं। जी हाँ, गर्मी के मौसम में स्किन से जुड़ी अनेक तरह की समस्याएं होती हैं। तेज धूप, पसीना और अन्य कारणों से स्किन से जुड़ी समस्या जैसे सनबर्न, एक्ने, इन्फेक्शन आदि का खतरा बढ़ जाता है। तो आज रेडियो डॉक्टर में जो हमारा टॉपिक है वो है स्किन केयर इन समर्स। हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल और आपके एंकर मैं सुजाता रथ। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर पूनम पुरी का, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में है। मैम वेलकम।
3: नमस्ते जी।
2: तो मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स, और मैंने जैसे कि बताया कि गर्मी में स्किन से जुड़ी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, खासकर के पसीना बहने के कारण, तेज धूप के कारण, या बहुत तरह के इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत इसी बात से करते हैं कि गर्मी में होने वाली आम स्किन प्रॉब्लम्स क्या क्या है। मैम
3: देखिए सुजाता जी, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है तो इस टाइम पर पसीना बहुत आता है और पसीने के कारण कई चमड़ी की इन्फेक्शन, स्किन की इन्फेक्शन हो जाती हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें फोड़े, फुंसियां हो जाते हैं, और ये अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स को ज्यादा होते हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको बॉयल्स ज्यादा होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होता है, जिसे हम दाद या रिंगवर्म इन्फेक्शंस कहते हैं, ये भी डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, और अब बारिशें शुरू हो जाएंगी जिसमें हवा में नमी ज्यादा हो जाएगी, उसके कारण क्या होता है कि पसीना सूखता नहीं है और घमोरियां, जिनको हम प्रिकली हीट कहते हैं, वो हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे आपने बताया पिंपल्स भी बढ़ जाते हैं, जिन्हें हम एक्ने कहते हैं। कुछ चीजें जैसे पसीने में बदबू आती है, कई बार पसीना जो होता है रंगीन होता है जो कपड़ों को सोख कर लेता है। धूप में जाने से भी कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे जिनको धूप में बाहर जाते हैं काम करना पड़ता है, उसके कारण भी कई बीमारियां धूप के कारण।
2: तो चलिए मैम, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम गिनाए, बहुत सारे इन्फेक्शन और प्रॉब्लम्स के नाम गिनाए, तो इन सब के बारे में हम जानेंगे और हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं स्किन की और खास करके इस मौसम में, तो वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं। और हम लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौटेंगे डॉक्टर पूनम पुरी जी के पास।

0: तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। डॉक्टर पुरी, एक मैसेज से शुरुआत करते हैं। कर्नाटक से है ये, विजयपुरा कर्नाटक से सागर मखीजा, इन्होंने लिखा है हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ स्किन ड्यूरिंग समर्स सो दैट वी डोंट फेस द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, सनबर्न एक्सेट्रा।
1: सागर मखीजा जी, आपने पूछा है कि केयर ऑफ स्किन समर्स में कैसे करें जिससे एक्ने ना हो और सनबर्न नहीं हो। देखिए, सनबर्न तभी होगा जब आप धूप में जाएंगे। धूप में जाने से जो धूप की रेज हैं वो मैक्सिमम 7 to 3 o'clock तक होती हैं। तो हम सब पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि एज फार एज पॉसिबल अवॉइड करें 10 to 3 तक धूप में बाहर जाना। और जो भी काम अगर आप अपना काम निपटा सकते हैं तो वो 10 बजे से पहले या 3 बजे के बाद आप करें, ताकि आपको सनबर्न और सन रिलेटेड स्किन डिजीजेस ना हो। दूसरा है कि आपको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, स्पेशली जिन लोगों को सन से एलर्जी होती है। और जब सनस्क्रीन लगाना है तो अच्छी मात्रा में लगाएं और आधा घंटा धूप में निकलने से पहले लगाएं, तभी इसका इफेक्ट होता है। और हर 2 to 3 घंटे दोबारा रीअप्लाई करें, क्योंकि पसीना आता है और पसीने से जो है सनस्क्रीन है वो फ्लो कर जाता है। दूसरा आपने पूछा एक्ने के लिए, देखिए क्या होता है कि जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, वो जो ह्यूमिड वेदर में और में स्वेलिंग हो जाती है और उसके कारण एक्ने बढ़ जाता है। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि दिन में 2 to 3 बार अच्छी तरह फेस को धोएं और कोई भी ग्रीजी चीज या कॉस्मेटिक्स जितना पॉसिबल होता है उसको अवॉइड करें।
0: एक कॉल है मैम। हेलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
2: मैं अहमद एजाज नहरपुरी बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए अहमद साहब, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पसीना जब निकलता है तो उसके बाद में पैरों की उंगलियों में कुछ खुजलाहट पैदा हो जाती है
0: जी,
2: और ये रहती है करीब करीब 15-20 मिनट बाद, उसके बाद खत्म हो जाती है।
1: अहमद इजाज जी, देखिए पसीना तो आएगा ही है ना, क्योंकि गर्मी बहुत है, तापमान बहुत है। तो यही है कि आप अपने पाँव को धोकर सुखा कर रखिए, जुराब वगैरह ना जितना हो सकता है ना पहनिए और जूते भी मत पहनिए। अगर आपको जुराब पहना है और शूज पहना है तो कुछ घंटे के लिए पहनिए और सूती जुराब पहनिए और रोज के रोज धोइए। और कुछ पाउडर्स आते हैं जो पसीना को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे चूस लेते हैं, तो उसकी जो है आपको राय एक त्वचा रोगी विशेषज्ञ से लेनी पड़ेगी, ताकि अगर पसीना आता है तो आप वो अप्लाई करें ताकि आपका पसीना ज्यादा ना आए और आपको तकलीफ ना हो।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: मैम एक और कॉल है। हेलो।
3: हेलो नमस्कार।
0: हाँ बताइए, कौन बोल रही हूँ और क्या पूछना चाहते हैं?
3: मैडम मैं पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: हाँ पंजाब से बोल रही हूँ, नाम बताइए।
3: पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ।
0: हाँ पुरुषोत्तम जी, क्या समस्या आपको?
3: मैडम मैं 70 years लगभग हूँ। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे ना पीछे गर्दन के पीछे हो जाते हैं धूप से छिंचे जैसे।
0: अच्छा, गर्दन के पीछे मैम छिल छिल सा जाता है, स्पॉट से हो जाते हैं जब बाहर निकलते हैं।
1: देखिए पुरुषोत्तम जी, आपकी उम्र 70 साल जैसे आपने बताया और आप धूप में निकलते हैं, मुझे लगता है पसीने के कारण आपको ज्यादा पसीना आता है और आपकी घमोरियां हो जाती हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो यही बताना चाहते हैं कि सूती कपड़े पहनिए और गर्मी से जितना हो सकता है बचिए, पर फिर भी क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा है और घमोरियां हो जाती हैं, तो इसमें कुछ सूदिंग लोशंस होते हैं जिन्हें हम कैलमिन लोशन कहते हैं, जिनके अंदर सूदिंग केमिकल्स होते हैं, वो आप लगा सकते हैं।
0: तो मैम ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है, रैशेस हो जाते हैं
1: जी
0: और खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो गर्मियों में यही ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती है मैम। और घिमोरियां जो आपने कहा कि, तो मैम घिमोरियों का क्या वैसे इलाज है? अक्सर हमने ज्यादातर लोगों को देखा है कि गर्मी के सीजन में घिमोरियां हो जाती है।
1: देखिए घमोरियां इसलिए होती हैं कि पसीना बहुत आता है और जो पसीने के जो डक्स होते हैं, स्वेट डक्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एक तो पसीना कम आने देना चाहिए, आप कोई इतनी ऐसे एक्टिविटीज मत करिए, जिम मत जाइए, बहुत जिमिंग नहीं करिए, बहुत विग्रस एक्सरसाइजेस नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, ताकि पसीना ज्यादा ना आए। सूती कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, त्वचा को सूखा रखिए और कुछ जैसे मैंने बताया सूदिंग लोशंस होते हैं वो आप लगा सकते हैं।
0: जी मैम, और मैम आपने एक बात कही कि जो डायबिटिक हैं उनको गर्मी के मौसम में स्किन की ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए मैम आप क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: देखिए, सबसे पहले तो है कि डायबिटिक मरीज जो होते हैं, स्पेशली जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है, शुगर अनकंट्रोल्ड होती है, उनको अपनी शुगर कंट्रोल करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ त्वचा नहीं, सारे ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। आपकी आईज में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके हार्ट में अफेक्ट पड़ सकता है, आपके गुर्दों में अफेक्ट पड़ सकता है, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल करिए। और दूसरा, जो इन्फेक्शंस होती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फोड़े फुंसी होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, उनको त्वचा रोग विशेषज्ञ से राय लेकर उसके अकॉर्डिंगली इलाज कराइए।
0: ओके मैम, तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनम पुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, और टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। और अब मैम की पसंद का एक गाना सुनेंगे, और खास करके फरमाइश आई कि के की आवाज में आज हम गीत सुने, तो ये गाना मैम मैं प्ले कर रही हूँ के की आवाज में।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: और आज के विशेष रेडियो डॉक्टर में हमारा जो विषय है वो है स्किन केयर इन समर्स। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल। मैं हूं आपके एंकर सुजाता रथ। मैम, एक व्हाट्सएप मैसेज है देवघर से। कुमार अजय लिखते हैं कि मेरा पसीने से कपड़े का रंग जो है वो काला हो जाता है, इसका क्या कारण है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है?
3: जी अजय जी, जैसे आपने बोला आपका पसीना का रंग काला हो जाता है, देखिए इसको हम या तो पसीने में बदबू आती है या पसीने के रंग पीला भी हो जाता है, कई बार लाल भी हो जाता है, कई बार थोड़ा ब्लैकिश टिंच भी आ जाता है। होता क्या है इसमें जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना प्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स आ जाते हैं और उनके कारण जो पसीना है, जो नॉर्मल पसीना है, उसका रंग नहीं होता। और जब पसीना बाहर होता है कई बार क्या होता है कि हम कपड़े पहनते हैं और कपड़ों के कारण भी वो जो पसीना है कपड़ों में से डाइज निकलती हैं उससे कारण रंग होता है। पर कई बार क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स में भी कुछ पिगमेंट्स हो जाते हैं एबनॉर्मल, उसके कारण भी पसीना काला हो जाता है। तो आप पसीना ज्यादा आता है एक्सिलरी फोल्ड्स में और नीचे की तरफ प्राइवेट पार्ट्स में, तो कोशिश करिए वहां पसीना नहीं आए। और कुछ एंटी परस्पिरेंट लोशंस होते हैं जिनमें एल्यूमिनियम सॉल्ट्स होते हैं, वो आप लगा सकते हो जिससे पसीने के जो डक्ट्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स के डक्ट्स होते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो एंटी परस्पिरेंट लोशंस का आप स्प्रेस होते हैं, लोशंस होते हैं, उनका आप यूज कर सकते हैं। और कपड़े भी बदलिए, कॉटन कपड़े पहनिए तो कुछ एक्सटेंड तक आपको मदद मिलेगा।
2: जी, मले घोषाल फ्रॉम सिरामपुर वेस्ट बंगाल लिखते हैं मैम कि कैन यू टेल मी डॉक्टर इज एक्जिमा क्योरेबल, व्हाई इट शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक फ्रॉम हैंड टू लेग्स।
3: देखिए एक्जिमा कई तरीके के होते हैं, ठीक है, और डिपेंड करता है। कुछ एक्जिमास क्यूरेबल होते हैं और कुछ एक्जिमास जैसे एंडोजेनस एक्जिमास है, कई बार हमें उसका कॉज पता नहीं चलता तो हम इसको ट्रीट कर सकते हैं पर वो दोबारा उभर आते हैं तो उसके कारण बार बार हो जाते हैं। बट कुछ तरह के जो एक्जिमास होते हैं जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, हमें किसी एलर्जी है, बिंदी से एलर्जी है, हेयर डाई से एलर्जी है या रिस्ट वॉच के स्ट्रैप से एलर्जी है, उसको हम क्योर कर सकते हैं।
2: जी, कॉलर ले लेते हैं मैम। हेलो।
4: हेलो,
2: हाँ जी बोलिए।
4: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार, बताइए।
4: हाँ जी मैम, ऐसे मेरी मदर है 74 इयर्स की, वो डायबिटिक पेशेंट है। तो वो उनको ना वो आप कहते हैं जैसे छपाकी सी निकलती है रेड रेड कलर की, उस पर खारिश होती है और वो इंसिडल लेती हैं। इंसिडल काफी सालों से ले रही है पर अब उनको इफेक्ट नहीं होता उसका।
3: जिससे आपने बोला कि आपके मदर हैं 70 साल की, डायबिटिक पेशेंट हैं और उनको छपाकी होती है। देखिए छपाकी कई सालों से लगता है आपकी हिस्ट्री, आपकी बातों से हो रही है क्योंकि आप इंसिडाल ले रहे हो। इंसिडाल एक अच्छी एंटी एलर्जिक है पर जब इसका असर नहीं हो रहा तो आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाकर राय लेना चाहिए। बहुत अच्छी एंटीहिस्टामिनिक्स मार्केट में आ गई हैं जो नॉन सेडेटिंग है, मतलब उनसे नींद नहीं आती है। और वो या तो वो डोज बढ़ाएंगे डॉक्टर या वो एंटीहिस्टामिनिक्स को चेंज करेंगे, और कई बार एक या दो एंटीहिस्टामिनिक्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है ताकि आपकी मदर का छपाकी कंट्रोल में आए।
4: हाँ जी मैम, एक्चुअली हमने दिखाया था स्किन डॉक्टर को
3: जी,
4: तो उन्होंने मेडिसिन जब दी तो इनका ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था वो लेने के बाद और ज्यादा।
3: देखिए नॉर्मली एंटीहिस्टामिनिक्स ब्लड शुगर को नहीं रेज करती।

0: मैम हेलो हेलो
1: जी, मेरा नाम क्लिफ्टन अल्मेडा है, मैं गोवा से बात करता हूँ।
0: हाँ जी,
1: मेरा तीन सवाल है। एक सवाल है वो सोराइसिस कैसा होता है, मींस व्हाट इज द कॉज, हाउ इट स्टार्ट्स, देन कैन आई आस्क ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर?
0: नहीं, आई थिंक इट विल बी बेटर यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस वन आफ्टर द
1: Okay,
2: हाँ जी, जैसे आपने बोला सोरियासिस, देखिए सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में लाल लाल दाने हो जाते हैं, पैचेस, और उनमें सिल्वरी वाइट स्केल्स होता है, और ये काफी क्रॉनिक डिजीज भी बनकर उभर कर आती है। ये सिर पर हो जाती है, सारे शरीर पर हो जाती है, नाखूनों में हो जाती है। इसका कई कारण है। शुरू में कहते थे कि ऑटो इम्यून डिजीज है, पर अब ये कहते हैं कि इसमें कई इन्फ्लेमेशन भी होती है स्किन में, और कई बार इन्फेक्शन भी ट्रिगर करती है, कई बार ड्रग्स भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज होते हैं इसके के लिए, जो एक डॉक्टर की ही समझ में है। अगर हम आपको समझाएंगे तो वो आपके समझ के बाहर होगा, पर आपको यही मानना पड़ेगा कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब हेरिडिटरी भी थोड़ा एलिमेंट होता है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्ले करते हैं एक रोल।
0: हाँ
1: जी डॉक्टर, ये मेरा बेटे के बारे में था, वो जब 6 साल का था उनको सोराइसिस हुआ था, और फिर डॉक्टर बताया था कि एक सिरप है जो 365 कहलाया जाता है, वो मल्टीविटामिन था, और उसपे उनका ठीक होता था।
2: देखिए, सिर्फ 365 के बारे में मैं नहीं जानती, पर बेहतर यही होगा कि सोरियासिस आप डॉक्टर के पास, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, वो असेस करेगा कितनी एक्सटेंट ऑफ सोरियासिस है। अगर सोरियासिस कम है, 10% से कम बॉडी को इन्वॉल्व करती है, तो ट्यूब्स लोशंस से इलाज हो सकता है, पर अगर 10% से ज्यादा है तो गोलियों का भी इसमें प्रयोग करना पड़ता है।
1: जी डॉक्टर, दूसरा सवाल है, अपना हेरिडिटरी है कि जब खाना खाते हैं हम लोग तो सिर्फ सिर के अराउंड द हेड, द फोरहेड एंड द टॉप ऑफ द हेड पसीना निकलता है। जैसा मेरा बेटा या बेटी जब छोटे थे, जब दूध पीते वक्त उनको भी पसीना निकलता था।
2: देखिए, एक कंडीशन होती है, जैसे मैं समझ रही हूँ, जैसे आप मिर्ची ज्यादा खाते हैं, या एक कंडीशन होती है गस्टेटरी हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको पसीना ज्यादा निकलता है। प्रोबेबली वो ही कारण होगा कि आप कह रहे हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो आपको पसीना आता है, ये एक नॉर्मल फिनोमिनन भी हो सकता है।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए।
3: मैं दर्शन रहता फ्रॉम जलंधर पंजाब से बोल रहा हूँ।
0: हाँ बोलिए।
3: हाँ, मेरी उम्र 82 इयर्स है।
0: हाँ जी,
3: और ल्यूकोडर्मा से मेरा शरीर 95% भरा हुआ, तो मेरे को कौन सा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए?
2: देखिए, जैसे आपकी उम्र भी 82 इयर्स है, और आपको ल्यूकोडर्मा काफी लगता है एक्सटेंसिव है, आपने कहा 95% बड़ा हुआ है। देखिए, साबुन ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है, पर हमें साबुन इसमें यूज करना है क्योंकि हमारी स्किन पर मिट्टी जम जाती है, स्वेट जम जाता है, सीबम ऑयल जम जाता है, तो उसे हमें हटाना है। तो हम यही रिकमेंड, हम कोई साबुन प्रमोट नहीं करेंगे, हम यही रिकमेंड करते हैं कि कोई माइल्ड सोप जो है आप यूज करिए, क्योंकि आपकी उम्र 82 इयर्स है, तो हम कहते हैं कि ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स जो होते हैं वो आप इस्तेमाल करिए। हम कोई सोप को नाम नहीं लेंगे, पर मार्केट में ग्लिसरीन बेस्ड सोप्स होते हैं, उनको आप यूज करिए ताकि आपकी त्वचा में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी ठीक रहे। ल्यूकोडर्मा का साबुन से कोई लेना देना नहीं है।
0: तो मैम ने आपको इनडायरेक्टली बता दिया कि जो ऐसा कोई भी साबुन जिसमें नमी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस विषय में और भी बातें होंगी पूनम पुरी मैम के साथ, जो आज हमारे साथ हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, और टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स।

0: तो रेडियो डॉक्टर में आज हमारा टॉपिक है स्किन केयर इन समर्स। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ द जंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। मैम एक व्हाट्सएप मैसेजेस कुछ ले लेते हैं। शशांक फ्रॉम उत्तराखंड, वो लिखते हैं मैम कि इनकी उम्र 22 साल है, इनके हाथों में बहुत स्वेट आता है।
1: जी शशांक जी, जैसे आपके हाथों में स्वेट आता है,

0: मुझे उम्मीद, मेरे को पता है कि आपके पाँव में भी आता होगा, क्योंकि एक कंडीशन होती है जिसमें हाथ और पाँव में पसीना बहुत आता है। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, एंग्जाइटी से होता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं, बहुत टेंशन होती है, तभी भी हमारे हाथों पाँव में पसीना आता है। इसके कारण और भी कॉजेस होते हैं जिसमें हाथ और पाँव में पसीना आता है। इसके लिए हमारे पास एंटी स्पर्सपिरेंट लोशंस होते हैं, स्प्रेस होते हैं जो हम लगा सकते हैं। फिर भी अगर पसीना, कुछ गोलियां होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर हाथ और पाँव में पसीना कम नहीं हो तो एक एंटोफोरेसिस मशीन होती है जिसमें हम हाथ और पाँव को पानी में भिगोते हैं और एक बहुत लो करंट पास होता है जिससे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई इलाज हैं इनके जिसमें हाथ और पाँव में पसीना कम हो सकता है।
1: हरियाणा से जतिंदर जी लिखते हैं मैम कि बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है तो ट्रीटमेंट क्या किया सकता है।
0: देखिए, बच्चे के स्किन पर गरम चाय गिर गई है तो मुझे लगता है कि सुपरफिशियल बर्न हुआ होगा, फफोले हो गए होंगे। तो इसमें सिल्वर सल्फा डाइजीन क्रीम होती है जो हम हमेशा रूटीनली बर्न्स के लिए देते हैं, वो आप लगा सकते हैं। पर अगर इन्फेक्शन है, पस मवाद पड़ी हुई है, फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि बहुत अगर ज्यादा जला हुआ है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में ज्यादा निशान ना पड़े।
1: रंजन कुमार फ्रॉम संत नगर बुरारी दिल्ली, मेरे फेस पर ऐसा लगता है मैम जैसे कि ऑयल लगा रखा है बहुत, जबकि मैं बिल्कुल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ऑयली स्किन।
0: देखिए, आप मेरे ख्याल से आपकी यंग एज होगी, आप टीनेजर होगे या आपकी कम उम्र होगी, क्योंकि उस टाइम पर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं और युवावस्था में जो होता है फेस जो है, आपके ऑयल ग्लैंड्स भी जो होते हैं एक्टिव होते हैं, इसलिए ऑयली स्किन हो सकती है।
1: जी, एक कॉलर है मैम, देखते हैं ये अभी है या। हेलो
2: हेलो, गुड इवनिंग सुजाता मैम।
1: हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए।
2: गुड इवनिंग डॉक्टर।
0: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल ये है कि मुझे है ना बॉडी के मतलब हैंड पे, लेग पे बॉइल्स है, बॉइल्स, ये बॉइल्स किस वजह से होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब कभी कभी फिश खाते हैं, चाहे वो करी हो या तली हुई मच्छी हो, उससे भी बहुत खुजली होती है, तो ये किस वजह से हो सकती है या इसको अवॉइड करना चाहिए।
0: देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, आपने कहा कि आपके हाथों पाँव में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये गर्मी के कारण ही होते हैं। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण स्किन में होती है तो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। आपको गर्मी से बचना है और आपको क्रीम्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स, उनको यूज करना है। और अगर फोड़े ज्यादा हैं, उनमें मवाद पड़ गया है, तो आपको एंटीबायोटिक भी खाना की जरूरत पड़ सकती है।
2: बॉइल्स है, बॉइल्स, एक्चुअली वो बॉइल्स है, बॉइल्स।
0: जी, बॉइल्स ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ये गर्मी के कारण होते हैं।
2: Okay.
0: और दूसरा जो आपने बोला कि आपको फिश खाकर प्रॉब्लम होती है, लगता है आपको फिश से एलर्जी है। बहुत लोगों को फिश से एलर्जी होती है, तो बेहतर यही है कि अगर आपको फिश से एलर्जी है तो आपको फिश अवॉइड ही करनी पड़ेगी।
2: ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू।
1: सुकांता बालो फ्रॉम हिसार हरियाणा, इनका क्वेश्चन है मैम कि गर्मी में क्या मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है स्किन पर नहाने के बाद। अक्सर हम सर्दियों में मैम मस्टर्ड, सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये गर्मियों में एडवाइजेबल है।
0: देखिए सुकांता जी, हम नॉर्मली एज स्किन स्पेशलिस्ट मस्टर्ड ऑयल को ज्यादा रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फोटोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे पिगमेंटेशन हो जाता है। हम सब अपने पेशेंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप या कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल या जैतून तेल, ऑलिव ऑयल या तिल ऑयल यूज करिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपकी स्किन ऑयली है, क्योंकि गर्मी है, पसीना ज्यादा आ रहा है, ऑलरेडी त्वचा ऑयली होती है, फिर हम कोई भी ऑयल रिकमेंड नहीं करते।
1: जी मैम, मैम एक लास्ट व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं।
0: जी,
1: 69 इयर्स ओल्ड हैं, शशि फ्रॉम दिल्ली, और जैसे कि आपने कोकोनट ऑयल की अभी बात की मैम, तो उन्होंने लिखा है कि क्या समर्स में कोकोनट ऑयल

0: को लगाया जा सकता है, खास करके फेस पर?
1: देखिए, समर्स में मैं नहीं रिकमेंड करती कोकोनट ऑयल को, क्योंकि ऑलरेडी पसीना आ रहा है, फेस ग्रीजी होता है, तो गर्मियों में एटलीस्ट आप अवॉइड करिए कोकोनट ऑयल को।
0: जी, तो मैम अब हमारे प्रोग्राम का वक्त चूंकि समाप्त होने जा रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरा एक लमसम हमें बताइए कि गर्मियों में हम अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करें, क्या अवॉइड करना चाहिए और हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए?
1: जी देखिए, गर्मियों में क्योंकि पसीना बहुत आ रहा है, आप वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है काफी लूज करते हैं, तो मैं सबको ये एडवाइस करूंगी कि पानी खूब पीजिए। पानी प्लेन भी पानी पी सकते हैं, नींबू पानी में नमक भी डालकर पी सकते हैं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हो रहे हैं। नारियल का पानी पीजिए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी नेचर ने ऐसे बनाए जिनमें खूब पानी होता है, उनका जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, खाइए, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो लाइट चीजें खाइए, बहुत तली हुई स्पाइसी चीजें नहीं खाइए, नहीं तो वो डाइजेस्ट नहीं होंगी। बहुत विग्रस एक्टिविटीज नहीं करिए, बहुत भागे नहीं, बहुत दौड़े नहीं, बहुत वेट लिफ्टिंग जिमिंग नहीं करिए, क्योंकि पसीना आता है और पसीने के कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉटन के कपड़े पहनिए, सुबह शाम नहाइए, धूप 10 से 3 तक ज्यादा होती है, उस टाइम पर कोशिश करिए कि बाहर स्टेप आउट नहीं करें, और मेंटल स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि अच्छी स्किन के लिए मानसिक तनाव भी नहीं होता। योगा करिए, मेडिटेशन करिए और खुश रहिए, यही सबसे अच्छी हेल्दी स्किन के सीक्रेट्स हैं।
0: और तभी कहते हैं मैम कि योगा और मेडिटेशन से जो है वो हमारी स्किन ग्लो करने लगती
1: जी.
0: है, नेचुरली ग्लो करने लगती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पूनम पुरी, डर्मेटोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल, आज हमारी गेस्ट थी और टॉपिक था स्किन केयर इन समर्स। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। शुक्रिया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी के बीजों के लिए की गई है। इसके बाद 557 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कपास के लिए और 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि तिल के लिए की गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी के पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नसिमयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष, प्रदेश अध्यक्ष VP रामलिंगम और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हाल की यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। विद्यार्थी रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। नीट UG परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण

ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा कारोबार में जून अनुबंध के तहत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग सी ट्योंग को हराया, जबकि मालविका ने कनाडा की वेन यू झांग और देविका ने जापान की नात्सुकी निदाइरा को हराया। पुरुष सिंगल्स में के श्रीकांत ने सिंगापुर के लो किन यू को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आयुष शेट्टी, थारुन मन्नेपल्ली, उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और अनमोल खरब को हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हाँ, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, अक्सर ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी कि सोच बदलोगे तो देश बदलेगा, क्योंकि जब किसी इंसान की सोच बदलती है तो उस इंसान का पूरा व्यक्तित्व ही बदलने लगता है और फिर यहीं से शुरू होता है एक ऐसा बदलाव जो बदल देता है पूरे समाज की सोच।
4: लगता है अपनी गुड़िया आ गई, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आजा मेरा बेटा।
5: नमस्ते मम्मी जी।
6: आ गई मेरी गुड़िया?
5: जी पापा जी। नमस्ते पापा जी।
6: आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई बेटा?
5: जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ उस तकलीफ के आगे ये तो कुछ भी नहीं है।
4: रो मत बेटा, हमने सूरज से बात की है, उसको समझाया है कि अब जमाना बदल गया है, लड़का और लड़की एक जैसे हैं।
6: बेटा, हमने दामाद जी को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि गर्भपात कोई खेल नहीं है, कि जब मन किया कह दिया कि चलो अबॉर्शन करा देते हैं।

0: देखो बेटा, तुमको पाने के लिए हम कहां कहां नहीं भटके। डॉक्टर ने तो यहां तक कह दिया था कि या तो तू बचेगी या तेरी माँ।
1: अरे छोड़िए पुरानी बातें।
0: नहीं, आज की पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि गर्भपात कराने से महिला कितनी मुश्किल से गुजरती है। शरीर में तो प्रॉब्लम होती ही है, मानसिक रूप से भी परेशानी होती है।
2: हमारे दामाद जी समझदार हैं, वो इन सब बातों को समझ चुके हैं। गुड़िया, इसीलिए जब तू यहाँ आ रही थी तो सूरज ने मुझे फोन किया था और कहा था कि मैं अपनी अनुराधा को कभी अबॉर्शन के लिए नहीं बोलूंगा। सच मम्मी?
0: हाँ बे।

0: साथ हैं और यही खूबसूरती हम हिंदुस्तानियों को बनाती है सबसे अलग। और दोस्तों, आज दिशा प्रोग्राम में हम इसी सोच को जानने की करेंगे कोशिश। दोस्तों, लेखिका और काउंसलर विनीता शॉ इस विषय पर क्या सोच रखती हैं, आइए सुनते हैं।
1: मुझे लगता है सोच को बदलना बहुत आवश्यक है। हम आए दिन देखते हैं वाहनों पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है, पुलिस जानकारी दे रही है, रेडियो मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन जब तक इंसान अपने आप अपने दिमाग की बत्ती जलाएगा नहीं, अपने आप ये निर्णय नहीं लेगा कि मैं बच्ची को मारूंगा नहीं बल्कि उसको जन्म लेने दूंगा। जी हाँ प्रिय मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमें परमेश्वर का डर अपने अंदर लाना है। बेगुनाह बच्ची की हत्या करना, चाहे गर्भ में हो चाहे वो जन्म के पश्चात हो, उसकी कदर ना करना, पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई, इस तरह की बातें कहना। मैं समझती हूँ जब तक हमारे दादा नाना पति पिता भाई लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि जिसको हम नकारात्मक कह रहे हैं वही तो है जो आगे वाली पीढ़ी को जन्म देती है। सोचने की बात है, अगर हमारे घर में बच्चियां नहीं जन्म लेंगी वो आने वाली पीढ़ी की माँ कैसे बनेगी, हमारी आगे नस्ल चलेगी कैसे, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर गौर करना ज़रूरी है कि चाहे हम कितने भी कानून बना लें, समाज का डर अपने अंदर ले आए, लेकिन जब तक हमारे ज़मीर को नहीं झंझोड़ेगा हमारे को ये बात समझ में नहीं आएगी। हमारी महिलाएं श्रोता हमें फ़ोन करके बताती हैं कि उनके परिवारों ने उनके ऊपर जबरन गर्भपात करवाए 8 बार 11 बार। पुरुष लिसनर्स फोन करके ये बताते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था गर्भपात कराने से उनकी पत्नी आगे बच्चों को जन्म ही नहीं दे पाएगी या उनकी पत्नी इतनी बीमार हो जाएगी। प्रिय श्रोता, हमारे अंदर जिस दिन ईश्वर का डर आ जाएगा उस दिन हम ये घिनौना काम कभी नहीं करेंगे।

0: तुम्हारी सोच अपने आप ही बदलने लगेगी। और हां, एक बात और हमेशा याद रखिएगा कि गर्भपात का निर्णय लेते वक्त आप अपनी पत्नी के निर्णय के साथ अवश्य खड़े रहें। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए सुनते हैं डॉक्टर राजेश छाबड़ा से।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश छाबड़ा हूँ। आज का जो विषय है उसमें क्या पुरुष को महिला का साथ देना चाहिए? यस, डेफिनेटली, क्योंकि जो महिला के शरीर पे गर्भपात से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उसको जो है पुरुष को भी साथ में भोगना पड़ेगा। मान लो मानसिक तौर पे अगर किसी को एंग्जाइटी या डिप्रेशन आता है, तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन अगर किसी लेडी को हो गया एज ए रिजल्ट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस बिकॉज ऑफ द एबॉर्शन, तो जो वो तो महिला तो सहेगी लेकिन पुरुष को भी सहन करना पड़ेगा, उसका घर भी बर्बाद होगा। घर के अंदर प्रॉपरली आप कीपिंग नहीं होगी, देखा नहीं जाएगा, घर संभलेगा नहीं, तो घर बिखर जाता है। डेफिनेटली इसके साथ मानसिक कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ शारीरिक कॉम्प्लिकेशन भी आती है। तो शारीरिक कॉम्प्लिकेशन में एक बड़ा कॉमन जो चल रहा है वो तो डेफिनेटली डेफिशिएंसी आ जाती है, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी आती है, माल न्यूट्रिशन आ जाता है, और जो प्रजनन अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी आने के चांस है। सो इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए अगर पुरुष महिला का साथ देगा तो उसको आने वाले दिनों के अंदर शारीरिक और मानसिक कॉम्प्लिकेशन से बच करके और उसका परिवार जो है सुख और समृद्ध रहेगा। इसलिए मैं ये सबको संदेश देना चाहूँगा कि आप जब भी कभी ऐसे डिसीजन हो तो उसमें आप ना कहना सीखिए। पुरुषों के लिए कह रहा हूँ मैं बात, ना कहना सीखिए। ना कहेंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे।
0: दोस्तों, आपकी एक ना सिर्फ आपकी पत्नी को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचाएगा बल्कि आपके रिश्तों को और मजबूत भी बनाएगा।

नमस्ते, मेरा नाम धीरज है। मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए थे जब मेरी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। तो बहुत जल्दी था, हमारी शादी का कुछ ही समय हुआ था, तो इसलिए हम दोनों ने ये सोचा कि इतनी जल्दी हमें बच्चा नहीं चाहिए, पहले एक दूसरे को समझ लें। तो हमने जाके गोलियों से गर्भपात कर लिया और तब से मेरी बीवी को इतनी प्रॉब्लम है कि हम आए दिन डॉक्टरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। आपने ये कार्यक्रम के द्वारा हमें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं गर्भपात कराने के लिए। काश ये कार्यक्रम हमने पहले सुन लिया होता।

0: तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7678438471। जी हाँ 7678438471। और हाँ, अगर आप दिशा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं और जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर उनको सवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें इसी नंबर 7678438471 पर मैसेज करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए बुधवार की शाम का हमारा वो खास प्रोग्राम जो जुड़ा है हमारे युवाओं से, जुड़ा है हमारी यूनिवर्सिटी के कैंपसेस से, कॉलेजेस से, स्टूडेंट्स से। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे को होता है ये स्पेशल एडिशन जो हम पहुंचाते हैं आप तक 4 से 5 बजे के बीच में सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। हर बार एक नए कॉलेज की सैर पर आपको ले जाती है हमारी सहयोगी, और आज हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा कहां पहुंची जी, वो पहुंची दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, और वहां पे उन्होंने की बहुत सारे लोगों से बातचीत और जाना उस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ। वो सारी जानकारी, वो सारी बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। चलिए करते हैं शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की सैर की हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ।
2: मेरा नाम है ऋचा, और अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में आज मैं आपको लेकर आई हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। और आइए बात करते हैं यहाँ की एक टीचर से, और जानते हैं जो एकेडमिक एजुकेशन है वो तो जरूरी है ही, साथ ही स्किल्स पर काम करना आज के दौर में क्यों एक जरूरत बन गया है।
3: Hi Richa, myself Professor Monica Bansal. I am a faculty at Department of Management Studies at Deendayal Upadhyay College. जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि academics के अलावा skills की बच्चों की life में क्या importance है, तो यहाँ पर मैं जरूर mention करना चाहूंगी कि colleges में जैसे classroom में तो focus रहता है mainly on the subjects we are teaching, maybe finance, marketing, IT or any other subject related, but outside the classroom students need to communicate ideas, solve various problems when they enter into the real life, where you see that they are not just dealing with the teachers, with them they are very much familiar, but they have to have into an environment which is very very uncertain. So in order to survive there, they need to have various different kinds of skills which we may call as life skills also, and sometimes the technical skills which they need to be in the corporate world.
2: Skill bhi utni hi zaruri hai jitni ki academic knowledge zaruri hai. मैम, स्टूडेंट्स को कामयाब करने के पीछे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर्स का ही हाथ होता है और टीचर्स ही उन्हें दिशा देते हैं जिससे उनकी दशा बदती है आगे जाकर। मैम, आपके जीवन का ऐसा कौन सा सक्सेस मंत्रा है जो आपने अपने स्टूडेंट्स को पास ऑन किया है?
3: ऋचा जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि देयर इज नो शॉर्टकट, ग्रेजुअली एंड स्टेडली इफ यू विल वर्क हार्ड तो नो डाउट यू विल रीच टू योर गोल्स।
2: मैम, ये जो आपका सक्सेस मंत्रा है ये हमारे लिसनर्स तक भी पहुंचे, और वो जिन्हें बहुत जल्दी है सक्सेस की, जिन्हें बहुत जल्दी पहुंचना है, याद रखें कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, पेशेंस रखना होगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद। डॉक्टर चारू कालरा, दीनदयाल।

0: उपाध्याय महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और पिछले 14 वर्षों से इस महाविद्यालय में कार्यरत हूँ।
1: मैम, आप 14 वर्षों से आप इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं, आपने इतना लंबा समय देखा है, तो मैम आपने क्या परिवर्तन देखा है स्टूडेंट्स की एक थॉट प्रोसेस में, उनकी डिटर्मिनेशन में, उनके फोकस में? आप क्या चेंज देखती हैं पिछले 15 सालों से और आज के बच्चों में?
0: उस वक्त के विद्यार्थियों का स्वभाव, उनका पढ़ने का स्टाइल, उनका इन्फॉर्मेशन गैदर करने का स्टाइल शायद न्यूज़पेपर्स थे, अगर 2012 की बात करूं। आज मान लीजिए वो इतना एडवांस हो गया है कि वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का एक मोबाइल की 30 सेकंड्स में ही इतना फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज सो फास्ट। ये तब भी ब्रिलियंट थे, ये आज भी ब्रिलियंट है।
1: मैम, आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनके सामने आपको क्या लगता है उनकी एक बहुत ही बेहतरीन बात जो हम सबको अडेप्ट करनी चाहिए और एक उनकी ऐसी प्रॉब्लम जिससे उन्हें ओवरकम करने की जरूरत है?
0: तो जो ओवरकम करने की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने को वो सोशल स्ट्रक्चर और वो कुटुंब व्यवस्था, अब अंतर्मुखी हो रहे हैं, कुटुंब व्यवस्था से दूर हो रहे हैं। ये भी मेरे लिए एक एज अ गुरु चिंता का विषय है, लेट एज में थोड़ा मैरिज की ओर जाना, पहले सेटल होना, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इससे ओवरकम करना, एक बैलेंस्ड डिसीजन लेना, इसके लिए सकारात्मक रहना।
1: अब सकारात्मकता की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, तो ऐसा कौन सा पॉजिटिव क्वालिटी है जेन ज़ी की?
0: वो मैं बताऊंगी, वो जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्वालिटी है, अगर कहीं मैं उनको कह रही हूँ अंतर्मुखी है, तो दूसरा कि वो अडेप्टेबल है।
1: ओके,
0: हमारी जेनरेशन हम रिजिड है।
1: तो मैम, ऐसे में एक आपका सफलता का मंत्र क्या रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए जो आपने भी धारण किया और आप इसे आगे पास ऑन भी कर रही हैं?
0: पुराना संस्कृत का श्लोक है, बहुत बार सबने सुना भी होगा, काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम।
1: मैम, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मिली, धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए।
0: मेरा भी सौभाग्य रहा कि ऋचा जी आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं भी अपने विचार सब तक पहुँचा पाऊंगी। धन्यवाद।
2: वाकई में ये विचार बहुत जरूरी हैं और विचारों का आदान प्रदान जो है ना लगातार होते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही तो हम एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करते हैं और साथ ही साथ हमारे ज्ञान में वृद्धि भी होती है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं सिर्फ और सिर्फ बुधवार को 4 से 5 बजे के बीच में। और कॉलेज का समय जो होता है वो ऐसा समय होता है जब इंसान को अपनी, जिसको हम कहते हैं ना, कॉलिंग पता चलती है कि जिंदगी में आखिर वो किस दिशा में जाना चाहता है और उस दिशा में उसको प्रेरित करने वाले जो टीचर्स हैं, अगर उनकी गाइडेंस उसको सही मिल जाती है तो ऐसे में जिंदगी की दिशा को तय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो ही जाता है। और फिर ऑफ़ टीचर्स की अगर हम माने तो स्टूडेंट्स में लगातार बदलाव आता है, समय बदलता है और समय के बहाव में बहुत कुछ बह जाता है और बहुत कुछ नया जो है ना वो हमारी आंखों के आगे आ जाता है। और इसी बदलते हुए जमाने का जो सबसे, अगर मैं कहूं कि सबसे एविडेंट अगर आपको कहीं पे वो चीज़ दिखती है, बदलता हुआ जमाना अगर आपको कहीं दिखता है और इस जमाने को और भी ज्यादा बदल देने की ऊर्जा अगर कहीं पे दिखती है, तो वो होते हैं हमारे कैंपसेस। और इसी कैंपस लाइफ को समेटकर हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस प्रोग्राम के जरिए अल्फा जन कैंपस कॉलिंग। और हम आज आपको सैर करवा रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जिसकी स्थापना हुई 1990 में। और यहां पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और उनके साथ करेंगे और भी ज्यादा कॉलेज की सैर। फिलहाल मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूं एक खूबसूरत सा गाना, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है अल्फा जन कैंपस कॉलिंग।

0: सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
3: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग में मैं और मेरी सहयोगी ऋचा वर्मा करवा रही हैं आपको सैर दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो कि 1990 में शुरू हुआ था, यहां पे बहुत सारी एकेडमिक और कल्चरल सोसाइटीज हैं और एकेडमिक्स के ऊपर तो हमने बहुत सारी बातें सुन ली। टीचर्स को हमने सबसे पहले जो है आज के हमारे कार्यक्रम में शामिल किया है। आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और जानते हैं कि उनके दिल की धड़कन क्या कहती है।
4: मेरे साथ आज है दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के स्टूडेंट और आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
5: हाय, मेरा नाम ऋषभ है। आई परस्यूड बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली।
4: क्या आप फोर्थ ईयर में हैं?
5: नहीं, आई ऑप्टेड आउट ऑफ फोर्थ ईयर क्योंकि मुझे मास्टर्स के लिए प्रेप करना था। आई एम प्रेपिंग फॉर माय एमबीए राइट नाउ।
4: वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो आप एमबीए का प्लान है आपका, ये आपका पैशन था, हमेशा से सोचा था कि एमबीए ही करना है या फिर ये आपकी फैमिली ने डिसाइड किया कि आप ये करें?
5: दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई ग्रो अप इन गुरुग्राम। फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आई हैड द गोल ऑफ डूइंग एन एमबीए एंड देन स्टार्टिंग माय ओन वेंचर।
4: तो क्या इंटरेस्ट है आपका? क्या मतलब आपका सेटअप ऑलरेडी एक सेटल्ड बिजनेस है या आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं?
5: मुझे एक स्टार्टअप शुरू करना है, पॉसिबली समथिंग विच क्रिएट्स अ कम्युनिटी ऑफ पीपल सो दैट पीपल कैन बी मोर कनेक्टेड टुगेदर, दे कैन मेक फ्रेंड्स एंड फाइंड पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट्स।
4: हमसे बात करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।
5: थैंक यू।
6: माई नेम इज अभय एंड आई एम इन थर्ड ईयर डूइंग बी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स साइंस।
4: तो आगे जाके आपके आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखते हैं?
6: वेल, एंजॉयिंग लाइफ, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड।
4: And how traveling changing the people? What do you think?
6: Traveling आपको the sense of freedom देता है जो आपको एक जगह पे रहने से नहीं मिलता है। When a person stays in one place for a long period of time, एक safe space बन जाती है जिससे वो निकलना मुश्किल हो जाता है। And when you break that space, you realize that there is much more to do in the world throughout the ages.
4: और कौन सा ऐसा देश होगा जो आप सबसे पहले घूमना चाहेंगे?
6: Definitely Japan. Well, I love the intermix of the culture and the technological advancement they have created.
4: हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आई एम श्योर की आप जरूर वर्ल्ड टूर पे जाए और एक बार नहीं दो बार जाए।
6: थैंक यू।
7: मेरा नाम साक्षी कुमारी है और मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की स्टूडेंट और मेरा कोर्स है BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस।
4: साक्षी, ये बताइए कि अगर आपको एक मौका मिले कि टाइम मशीन में बैठकर आप वापस जा सकें और अपनी यंग सेल्फ को एक एडवाइस दे सके तो वो एडवाइस क्या होगी?
7: मेरी एडवाइस

0: होगी कि नेवर डाउट योर सेल्फ।
1: इसका मतलब है कि आपने खुद पे कभी डाउट किया है?
0: यस,
1: ओके, और उस डाउट को फिर क्लियर कैसे हुआ वो डाउट?
0: जो डाउट आया वो थोड़ा फेलियर की वजह से आया, बट मैंने उस फेलियर में खुद को रोका नहीं। मैंने कहा एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। एंड उस ट्राई के बाद मैं जो पीक पे गई हूँ, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो नेवर डाउट माय सेल्फ, आई विल नेवर डाउट माय सेल्फ अगेन।
1: वाह, दैट्स रियली गुड। आज इस कॉलेज का आपका आखिरी दिन है, आज फेयरवेल पार्टी है, और मुझे पता है कि बहुत सारे इमोशंस आपके मन में उमड़ रहे होंगे, क्योंकि कॉलेज का बेशक ये आखिरी दिन है पर असल जिंदगी में आपका पहला कदम है। कैसा महसूस कर रही हैं आप?
0: कुछ नया है, कुछ अलग है, पर ये जरूरी भी है ताकि मैं और आगे बढ़ सकूं, मैं और ग्रो कर सकूं। सो इसको एक्सेप्ट करते हुए, अपनी मेमोरीज को, जर्नी को साथ लेते चलते हुए आगे की जर्नी बनाने का सोचा है मैंने।
1: तो अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ देखती हैं?
0: खुश देखती हूँ,
1: बहुत
0: कामयाब देखती हूँ।
1: अच्छी बात कही आपने। आपके हाथों में एक पेपर पे एक बहुत प्यारी सी कविता लिखी हुई दिख रही है मुझे। कहिए, कविता किस विषय पे है?
0: सो दिस पोएम इज बेसिकली द कॉन्वर्सेशन बिटवीन कॉलेज मी एंड लिटिल मी। सो आई बिगिन। लिटिल गर्ल, लुक हाउ फार यू हैव गॉट। यू आर नो लॉन्गर जस्ट लॉस्ट इन थॉट। योर पैलेट ऑफ ड्रीम्स, बोल्ड एंड वाइट, इज पेंटिंग रियल लाइफ फ्रॉम डीप इन साइड। द कैनवस ऑफ लाइफ नाउ स्टार्ट टू शो ऑल द थिंग्स यू ड्रीम्ड लॉन्ग अगो। द गर्ल हु ऑलवेज शील्ड अवे now speaks with confidence every day. The lonely girl who stood apart now has wonderful pause with a loving heart. The girl who thought she'd never compete now fences strong on a national feat. The girl who felt she wasn't pretty enough now wins and shines bold and tough. The girl who thought she'd never be loved got her very first sweetheart she never thought of. You may not be perfect or top the class, but that was never your strength or path. Your goal was always to live life true, through every high and every blue. You feel so deeply, yes, that it's true, but that's the special part of you. I may blame you, I may be hard, I may leave you a little scared, but never forget, through all you do, I'm always the one who stands for you. Thank you.
1: Wow, it's really nice, very motivating and very nice selection of words that you have choose for you. चलिए, आज आपका कॉलेज का आखिरी दिन है, जिंदगी में पहला कदम है, और आप जिंदगी के हर कदम में ढेरों सफलताएं पाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
0: थैंक यू एवरीवन।
2: Myself Samirang K. I'm from Deendayal Upadhyay College. I'm doing my fourth year right now in botany, and I used to be part of the music society. And I'm basically from Kerala.
1: अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए कि आपको दिल्ली में इतना टाइम हो गया और आपने इस कल्चर को धीमे धीमे अडेप्ट कर लिया होगा, आई एम श्योर। तो केरला से और दिल्ली के कल्चर में आप क्या कल्चरल डिफरेंस क्या देखते हैं आप?
2: बहुत सारा कल्चर डिफरेंसेस, एंड आल्सो आई एम अ पर्सन हु रेस्पेक्ट एवरी कल्चर।
1: सो विच काइंड ऑफ म्यूजिक यू रिसाइट?
2: एक्चुअली आई एम प्रोफेशनली ट्रेन्ड कर्नाटिक म्यूजिक स्टूडेंट, इवन आई डू बॉलीवुड, आई डू लिसन बॉलीवुड टू।
1: तो ठीक है, हम भी ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और सिर्फ हम आपकी बेहतरीन आवाज में कुछ सुनना चाहेंगे।

0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से गाया। अच्छा इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम सब लोग को इसको नहीं समझ आया हमें क्या कहा आपने।
1: So it's a song about Ram.
0: It's a kind of Ram stuti.
1: Yes, sort of. It's a kirtanam actually, sort of a kirtanam.
0: तो ये तो आपने बहुत ही अच्छे से गाया। अच्छा कुछ हमें हिंदी में सुनाइए।
1: हाँ, एक दिल है एक जान है
0: पद्मावत।
1: यस।

102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा और वहां के बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स से की उन्होंने मुलाकात। और दिल्ली मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी को अक्सर हम मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स कहते हैं। देखा जाए तो केवल भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर तक से भी लोग जो है इसी कैंपस के आकर्षण से खींचे चले आते हैं, इसी कॉलेज लाइफ को जीना चाहते हैं बार बार बारंबार। फिलहाल हम उसे जी रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए और आप सब तक भी पहुंचा रहे हैं इन बहुत ही खूबसूरत पलों को 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और भुलाने में जमाने लग जाते हैं इस बदलते हुए जमाने को साथ साथ जीने के साथ। जी, इस बदलते हुए जमाने की जिसकी झलक हमें मिलती है हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, इन कैंपसेस में, और जमाना लगता है इस जमाने को भुलाने में। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पे आज हम पहुंचे दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। हमारे सहयोगी ऋचा वर्मा ने की वहां के प्रिंसिपल से बातचीत, आइए जानते हैं।
1: नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आज मैं आपको लेकर आई हूँ अल्फाजन कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानवतावाद की बात की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, और साथ ही कहा अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का भी उदय हो। उन्होंने समाज के गरीब कमजोर वर्ग के लोगों के विकास की, कल्याण की बात की। और सर, इस मानसिकता को, इस ये जो कॉलेज है, इस विचारधारा को किस तरह सपोर्ट कर रहा है, हम कॉलेज के जो सोशल इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे।
2: नमस्कार, प्रोफेसर हेमचंद जैन, प्रिंसिपल दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज। FM पे आए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज दीनदयाल जी के बताए हुए मार्ग पर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हुए समाज के अंत के उदय के लिए काम करता है। इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो हमारे कॉलेज में चलती हैं, और जिसमें से एक स्कीम मैं बड़े डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना

0: चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर साइंस की एजुकेशन बहुत ही कम मात्रा में पहुंचती है, और ये स्कूल ऐसे हैं जो कि सुदूर प्रदेशों के गांव देहात के अंदर स्थित हैं, जैसे कि उत्तराखंड के डीप जो गांव हैं उनके अंदर जो स्कूल्स हैं, और या हिमाचल प्रदेश के कुछ स्कूल्स हैं जिनमें कि बहुत ही दूर दराज के जो गांव हैं उनके अंदर जो स्कूल्स हैं, वहां पर साइंस की एजुकेशन के लिए लेबोरेटरीज का अभाव है। ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और फ्रीक्वेंटली साल में कम से कम 2 या 3 इनिशिएटिव हमारे इस तरीके से रहते हैं, जिसमें हम उन स्कूल्स के टीचर्स स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज में इनवाइट करते हैं, यहाँ पर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होल्ड करते हैं, उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हम यहाँ पर करते हैं। वो स्कूल हमारे जो कॉलेज के एक्सपर्ट प्रोफेसर्स हैं उनको इनवाइट करते हैं, और वो उनके स्कूलों में जाकर साइंस की एजुकेशन के बारे में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो देते हैं। हमारे टीचर्स कुछ ऐसे प्रैक्टिकल भी उनको सिखाते हैं जिससे कि बगैर इक्विपमेंट, जो कि हमारे कॉलेज में तो खैर हर तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उन स्कूल्स में जहां पर इक्विपमेंट्स का अभाव है वहां पर उन एक्सपेरिमेंट्स को कैसे किया जाए, ये चीज भी हम उन टीचर्स को और उन बच्चों को सिखाते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर साइंस एजुकेशन को लेके जो एक अच्छा माहौल बनना चाहिए वो बनता है, और वो बच्चे उस साइंस के प्रैक्टिकल्स को डिटेल में समझते भी हैं। हमने कुछ ऐसे स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम रखे हैं जो कि बच्चे हमारे कॉलेज के अंदर वो सीखें और जाके अपने गांव देहात में जाके उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि एक स्कीम है मशरूम कल्चरिंग की, हम यहाँ पर बच्चों को मशरूम कैसे उगाए जाते हैं उसके बेसिक से लेके और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है यहाँ तक का पूरा प्रोसेस हम उनको समझाते हैं। हमारे 80 बच्चों का एक ग्रुप होता है, 80 बच्चे मान लीजिए उसके अंदर हैं, और उसमें से 10 बच्चे भी इस प्रोजेक्ट के प्रति उत्साहित हो जाए और वो अपनी यूनिट लगा लें तो वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से बिता सकते हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। सर स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स तो हैं ही, साथ में हम सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, पर सर अगर हम कॉलेज के जो बेसिक कोर्सेज की बात करें तो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो कॉलेज में अभी चल रहे हैं?
0: हमारे यहाँ प्राइमरली कॉलेज में 11 साइंस के कोर्सेज हैं, 4 जो है अदर देन साइंस कोर्सेज हैं। 11 जो साइंस के कोर्सेज हैं उसमें सबसे पहला कोर्स है केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स, बॉटनी ऑनर्स, जियोलॉजी ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, मैथमेटिक्स ऑनर्स, 4 जो है वो प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं, जिसमें एक है बीएससी फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिकल साइंस एंड बीएससी लाइफ साइंस। तो ये 4 हमारे पास जनरल वाले कोर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अदर देन साइंस के जो कोर्सेज हैं उसमें है बीकॉम ऑनर्स के 3 सेक्शन है, बीएमएस का 1 सेक्शन है, 1 सेक्शन इंग्लिश ऑनर्स का, और 3 सेक्शन बीए प्रोग्राम के हैं। तो इस तरह से करके हमारे पास ये 15 कोर्सेज जो है वो चलते हैं।
1: सर अगर इतने सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, कई सारे साइंस कॉलेजेस हैं जिसमें से दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज एक कॉलेज है, सर फिर भी आपको क्या लगता है कि आपका कॉलेज कैसे बाकी कॉलेजेस में स्टैंड आउट करता है और एक विशेष कॉलेज है?
0: 2017 में NIRF रैंकिंग चालू हुई थी, कंटिन्यूसली हमारा कॉलेज जो है वन ऑफ द टॉप रैंक कॉलेज है, एंड Our college is in the NIRF ranking because the teaching staff of this college is extremely good. They are very dedicated.
1: सर हमसे बात करने के लिए और दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है उसे आगे ले जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कॉलेज बहुत ग्रो करे और आगे जाके जिसकी रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं।
0: थैंक यू, नमस्कार।
2: अभी आपने सुना हमारे सहयोगी ऋचा वर्मा के साथ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के प्रिंसिपल की बातचीत को। वाकई में शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण भी है, और उसके साथ साथ ज्ञान की जो रोशनी है, वो जो मशाल इन्होंने अपने हाथ में उठाई है उसे अपने आसपास के सभी कोनों में पहुंचाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, शॉर्ट में DDUC जिसको कहा जाता है हमारे कैंपस लिंगो में, उस कॉलेज की सैर करवा रहे हैं हम आपको आज हमारे आज के इस प्रोग्राम में। नाम है इसका अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल, और बहुत सारे स्टूडेंट्स से की हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने बातचीत, और जैसा कि आप पहले भी सुन चुके हैं फेयरवेल जो है चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉलेज से अपनी शिक्षा समाप्त करके जो है आगे दुनिया में अपना मकाम बनाने के लिए निकलने वाले हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों से की बातचीत, आइए सुनते हैं।
1: आज मैं आई हूँ दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज

0: कॉलेज और मेरे साथ एक स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका?
1: हाय, आई एम सुदीति पान और आई एम करंटली परस्यूइंग बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस।
0: अच्छा, एक बात मुझे जाननी है आपसे कि आप दिल्ली में हैं आप इतने टाइम से, तो दिल्ली की कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होगी जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी।
1: दिल्ली की एक अच्छी बात है फास्ट पेस्ड लाइफ, मूव ऑन करना इजी।
0: आप यहाँ कॉलेज की सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं?
1: मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव डेडिकेटेड टू कलमकार, द लिटरेचर एंड लिटरेरी सोसाइटी।
0: थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।
1: थैंक यू, आई एम ब्लेस्ड।
2: हेलो मैम, माय नेम इज दिव्यांश यादव एंड आई एम करंटली परसुइंग माय स्टडीज एज अ फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च पोस्टर प्रेजेंटेशन कंपटीशन करवाया था, उसमें हमारे कॉलेजेस ने और बाकी डीयू के कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करा था, तो उसमें मेरे को बेस्ट पोस्टर का अवार्ड मिला फॉर माय वर्क इन दी कंप्यूटर साइंस फील्ड। सो बेसिकली मेरा एक डीप लर्निंग बेस्ड आर्किटेक्चर था, मैंने उसको कैनवा पे पूरा प्लॉट और ड्रॉ करके विजुअलाइज करके समझाया था उनको, जिसमें बेसिकली न्यूमेरिकल डिटेल्स भी थी, फ्लो चार्ट्स भी थे, डायग्राम्स भी थे। करनी चाहिए।
0: हमें आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने जानने को भी मिला और शायद आप जैसे टैलेंटेड बच्चों की आज बहुत जरूरत है हमारे देश को। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू सो मच मैम।
3: मेरा नाम कृति सेठी है, मैं दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की छात्रा हूँ और करंटली मैं बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज का कोर्स कर रही हूँ यहाँ से।
0: तो क्योंकि आज फेयरवेल पार्टी है और आज आप लोगों का आखिरी दिन है, इतने साल आपने इस कॉलेज में बिताए हैं, इन कॉलेज के दिनों में जरूर कोई ऐसा मोमेंट होगा जिसे सोचकर आपको बहुत प्राउड होता होगा, वो मोमेंट कौन सा है आपके लिए?
3: मेरा मोमेंट काफी रिसेंट है एक्चुअली, मैं फोर्थ ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो हमें डिसर्टेशन का प्रोजेक्ट मिला था ड्यू की तरफ से फॉर फोर्थ ईयर। सो हमारे कॉलेज से बोला गया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अभी रिसेंटली एक एग्जीबिशन लगा था UGREE, तो उसके अंदर हर कॉलेज से कुछ 10 बेस्ट स्टूडेंट्स के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जाने थे, उसमें मेरे को सेलेक्ट किया गया टू रिप्रेजेंट आर कॉलेज दीनदयाल उपाध्याय को, तो वो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मेरी मेहनत पूरे साल की रंग लाई और उसको रिकग्निशन मिला। एंड मेरे को ड्यू में बाकी स्टूडेंट्स के सामने, बाहर के प्रोफेसर्स एवेल्युएटर्स आए थे, उन सबके सामने भी अपनी मेहनत दिखाने का मौका मिला।
0: अभी 10th का रिजल्ट आया है और 10th 12th के रिजल्ट के जो मार्क्स हैं वो बहुत ही, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एंग्शियस होते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मार्क्स हैं क्या वो इंटेलिजेंस डिसाइड करते हैं किसी स्टूडेंट का?
3: मैं इस पे बिल्कुल अग्री नहीं करूंगी। आई बिलीव मार्क्स, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम जैसे इतने सालों से रहा है, मार्क्स की काफी वैल्यू है, बट अपार्ट फ्रॉम IQ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है एक बच्चे का एस्पेक्ट, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है।
0: क्या बात है, तो आप आगे जाकर बहुत अच्छी मैनेजर बने और आपके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो आपके अंडर काम करें लोग, वो भी आपके लिए बहुत खुश हों, आपके आगे पीछे आपकी तारीफ करें, यही हम चाहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: हाई, माई नेम इज वर्षा एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम BA हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस।
0: योर टीचर इज सेइंग दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर, यू हैव सिंग रियली वेल, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस इंस्पिरेशन?
4: My mother was a singer, so I have learned Carnatic music since a very small age.
0: आप कर्नाटक म्यूजिक की बात कर रही हैं, आपके फ्रेंड ने इतना सुंदर कुछ सुनाया हमें और हम फिर से चाहेंगे कि आप क्लासिकल से शुरू करें और फिर हम बॉलीवुड पर आए।
4: This is a Swarajati

0: बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और ये आपने कर्नाटक म्यूजिक से इंस्पायर्ड पीस सुनाया हमें,
1: थैंक यू।
0: तो ऐसा कौन सा हिंदी सॉन्ग है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है या आपका फेवरेट है, वो हमें गुनगुना दीजिए थोड़ा सा।

0: बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत आपने गाया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके वर्षा। जो आपने स्वरों की वर्षा की है ना यहाँ पर, वो बहुत ही यादगार है और मुझे लगता है शायद हम इसे हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के
1: थैंक यू
0: लिए।
1: सो मच। थैंक यू।
2: मेरा नाम निष्कर्ष महेश्वरी है। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं लास्ट पिछले 12 या 13 सालों से थिएटर कर रहा हूं। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का विद्यार्थी भी हूं और मैंने काफी डिफरेंट स्टेट्स में जाके वर्कशॉप्स ली हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के साथ काम किया है।
0: आपने भी कहा कि आप आवाजें निकालते हैं, किस तरह की?

0: आवाज है, आप किसकी आप मिमिक्री करते हैं आप?
1: कुछ कार्टून शोज आते हैं जिसके कुछ कैरेक्टर्स की मैं आवाज नहीं।
0: प्लीज हमें बताइए कुछ।
1: यदि आपने सुना हो, एक शो आता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस, कार्टून नेटवर्क पे बच्चों का शो है, तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं उनकी मैं आवाज निकाल सकता हूँ।
2: हे भैया, इस गर्मी भरे मौसम में इस ठंडे ठंडे स्विमिंग पूल में नहाने का मजा ही कुछ और। आई जस्ट लव स्विमिंग।
3: ए मम, क्या सॉलिड आइडिया है। अरे इस बिल्ली को कोने में जब भी नहीं तब भी मिलेगा।
4: ये चप लो या टप लो, और जैसे भूखा कुत्ता रोटी लेके आता है ना, वैसे इस बिल्ले को मेरे पास लेके आ। अरे मैं इसको मस्त तेल में फ्राई करके ऑमलेट के साथ खाऊंगा।
0: वाओ, क्या बात है, आपकी आवाज में तो सच में जादू है।
1: थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आप लोगों की तरह और भी लोगों को ये अपनी आवाज सुनाना चाहता हूँ, और मैं डेफिनेटली आज एक बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आकाशवाणी को, जो मुझे उन्होंने ये मौका दिया है।
0: आप इतनी खूबसूरत आवाजें निकालते हैं और इतने क्रिएटिव हैं आप, तो आप आगे जाके आप तो थिएटर और MBA के साथ साथ आप तो रेडियो जॉकी बन सकते हैं।
1: ये तो आपने मेरा सपना मेरी आंखों के सामने साकार करते दिखा दिया, और डेफिनेटली मैं बहुत बहुत टाइम से आकाशवाणी सुनता था, और क्योंकि मुझे रेडियो में जो लोग आवाज देते हैं उनकी आवाज बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी, ऐसा लगता था कि इन्हें सुनते रहो। तो मैंने बहुत बार कोशिश भी की कि मैं एक बार आकाशवाणी चलाऊं, और उन्होंने जो कहा उसको वापस से दोहराने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली यदि मेरा कोई मेरी सक्सेस स्टोरी बनती है तो उसमें आकाशवाणी का हाथ जरूर होगा, और मैं आकाशवाणी से बहुत समय से जुड़ा भी हूँ और जुड़ना भी चाहता हूँ, आगे चल के उनके साथ काम भी करना चाहता हूँ।
0: आकाशवाणी पर तो आप आ ही गए हैं, साथ ही हम आपको एक मौका देते हैं, आप ही के अंदाज में आज इस प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं।
1: मेरा नाम है निष्कर्ष और आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो, दिल से दिल तक। कैसा लगा आपको आज का ये प्रोग्राम, अपनी फीडबैक जरूर शेयर करें, और आप शेयर कर सकते हैं इस नंबर पर 9868107070 पर।
5: क्या बात है जी, निष्कर्ष ने तो वाकई में हमारे प्रोग्राम को निष्कर्ष पे पहुंचा दिया। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज से हमारी सहयोगी ऋचा वर्मा ने की वहां के टीचर से, प्रिंसिपल से और स्टूडेंट से बातचीत। हर बार लेकर आते हैं आपके लिए एक नया कॉलेज, एक नया गलियारा, एक नया कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का, और आज हमने सैर की दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज की। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम यानी कि अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन, इसको समेटने का समय आ गया है। इसी के साथ स्वाति को दीजिए इजाजत, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो। अगले हफ्ते एक बार फिर से आपके लिए लेकर आएंगे एक नया कॉलेज, और यूनिवर्सिटी की सैर यूं ही जारी रहेगी आकाशवाणी रेनबो पे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए के धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: पूर्ण भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नॉन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने 144 विधायकों के समर्थन के साथ विधानसभा में विश्वासमत हासिल कर लिया है। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाली AIADMK ने सरकार का समर्थन किया। एडापड्डी के पन्नी सामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना DMK के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और PMK समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। DMK और अन्य गठबंधन सहयोगी दल मतदान में शामिल नहीं हुए। पुदुचेरी में ऑल इंडिया NR कांग्रेस नेता N रंगास्वामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उपराज्यपाल KK कैलाशनाथन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया NR कांग्रेस के मल्लाड़ी कृष्णा राव और भाजपा के N नमसी वयम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देशभर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णायक समाधान प्रदान करना है। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बिबवेवाड़ी इलाके से गिरफ्तार इस महिला को प्रारंभिक पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष कुल 85.20% छात्र उत्तीर्ण हुए। छात्राओं का प्रतिशत 88.86 और छात्रों का प्रतिशत 82.13 है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 50 अंक बढ़कर 74,600

खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

0: পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। IPL क्रिकेट में रायपुर में आज शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए ये मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: पासस्य कृते पञ्चशतं रूप्यकाणि प्रति क्विंटल, तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्रीवैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणाम् अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये श्री जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरगच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टि, तीव्र वायु वेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिमेशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकटकालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्रराज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये श्री जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे TVK सर्वकारेण सहज बहुमतेन शक्षिपरीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।

0: वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रति वर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की यह पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंत्रिमंडल की मंजूरी से देश के करोड़ों किसानों को अपने उत्पाद के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। यह कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। फिलहाल बारिश के कारण टॉस में देरी हो रही है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु जीत दर्ज कर शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Union Cabinet has approved increase in minimum support prices or MSP for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting, Information and

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰস্তুতা খন্তেক পাছতে সমাচাৰ সন্ধিয়া নিউজ 8-9 আৰু স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस

0: 50% या 50 से अधिक, टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
0: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी, इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। CBI ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। CBI इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के बेड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात

0: मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि चार यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the four European countries.
1: चार यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से तीन भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहन

0: बीमा योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95.70 रुपए पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support price, MSP, of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers.